उस वेले बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बीड़ां दी लिखाई कर रहे सन, पर जदों उन्हां नूं अमृतसर तों आए एक गुरु दे सिख ने हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दी गल दसी तां उन्हां ने कलम छड के दोबारा फिर तेग चुक ली अते जख्मी शेर वांग दहाड़ उठे।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। साथ सगत बोलो श्री टुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पा

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लेके जा रही ते सच्चे पातशाह ने इस जल दे नाल इशनान कर जो जल दी गागर ना टिकन दी खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पूछया।

निर्धन को पाले निर्धन को पाले निर्धन को पाले हाय हाय निर्धन को पाले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघदे हां अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू सत्संग जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

चित्त आनंद पूर्ण परि परमात्म देव कातरे मुतलक माहे जबी शाहे खूबा हस्ती मुकदस लाल इंतहा कुल आलम दी सुल्तान सरवरे कायनात पतत पावन राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुशोभित बैठे हो तो सतगुरां ने बड़ी साडे ते कृपा कीती है कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे नाल रागां दा खजाना जो है बख्शिश कीता है। सतगुरु पातशाह जी ने मुख रागां तो इलावा मिश्रत राग सतगुरु ने दिते सानू। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दे बारे दसां नू हुक्म होया है कि कोशिश करो कि सारी बाणी सारा कीर्तन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दा होवे। तो आओ आरंभता विच ही शास्त्रनामा सतगुरु पातशाह जी ने बहुत सुंदर पुस्तक कीती है। सतगुरु पातशाह जी ने विचित्र नाटक विच पातशाह जी ने शास्त्रां नू भगवती नू खग नू नमस्कार कीती है। सतगुरु पातशाह जी उच्चारण करदे ने विचित्र नाटक नमस्कार मोरंग तीरंग तुहंगं नमो खग अदंगं अपेंग अपंगं गदांग गृष्टम नहो समो सहसियं जिने तुलियंग वीर दियो ना दियो। सतगुरु पातशाह जी दे आओ शास्त्रनामा बड़े प्यार नाल श्रवण करो। ये राग जो आप जी श्रवण कर लगे हो कोशिश करांगे राग ये जिस तरह के आप जी सारे जानते हो पंथ प्रसिद्ध जथा सत्कार योग अति सत्कार योग भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी गुरबाग सिंह जी जो पंथ के रतन हैं पंथ के हीरे ने तो सतसंग जी वह भी बैठे ने तो अमरीत सिंह जी जख्मी साहब जी कीर्तन करके गए ने। तो आओ ये राग जो आप जी के सन्मुख रखन लगे हैं ये राग जिस तरह के औडव जाति छाडव जाति संपूर्ण जाति तीन जातियां दे राग मन्ने जाते हैं पर चतस्वरी जाति चार सुर का राग है। इसका नाम भवानी राग है मां ते सा इसका वाती है बिलावल थाट का यह राग है। तो आओ बड़े प्यार गा पा नी ये वर्जित करके

0: हर अखो सतनाम।
1: जिथे बाबा पैर
0: जिस धरती ते भी चरण पाए उस स्थान ते पूजा अकाल पुरख भी शुरू हो गई। ते जे किसे प्यार वाले दे हिरदे दे विच चरण पाए उस हिरदे विचों भी अकाल पुरख दी पूजा शुरू हो गई। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। मान करो जिस दयालता दी जिस कृपा दे उत्ते गुरु नानक दी सोई पहुंची है किसे दी नहीं पहुंची। बाबा जी वचन कर दे सी गुरु नानक साहब जी दे दुनिया नू तारन दे विच चार विशेष गुण सन। चार विशेष गुण की सब तो पहला विशेष गुण के अज तक किते मिसाल नहीं के अवतार पापी दे घर चल के गया होवे आ भी झोली पर दात लै लै आखो सतनाम। दूसरी विशेष गल जिन्हों भी तारिया बाणी का तीर मार सात संगत। तीजी विशेष गल जिन्हों भी तारिया उदा पिछला लेखा नहीं पुछया भज के आखो सतनाम। नहीं तो लेखा दे है ना। पर तुहाडे सामने मिसाल है कि सजन ठग दा पिछला खाता किथे गया जज के आखो सतनाम। मान करो ये गुरु नानक। दीपालपुर कौड़ी दा पिछला लेखा किथे गया कौडे राक्षस दा भूमिए चौर दा बली कंधारी दा। सतगुर गुणी निदान है गुण कर बख्शे अवगण आरे। किते ते सजा दे के औगण नूं बख्शिया जांदा किते गुण कोलों दे के औगण लै के इंज औगण बख्शे जांदे। ए तीजी विशेषता पिछला लेखा नहीं पुछिया पिछला साव नहीं पुछिया गुरु प्यारे। हुण इक चौथी गल सुन फिर होर प्यार आ जांदा। गुरु नानक दे चार तारण विच चौथी विशेषता कि जिदे ते नजर कीती है उनू केवल तारिया नहीं उदी इन्नी की बैटरी चार्ज करती कि अगों कईयां नू तारन वाला बना दिता है गज के आखो सतनाम। ये बड़ी वड्डी गल है। इक ते इनू तार दिता उनू अगों जोगा बना कोई ले लो सज्जन ठग नूं लाके दा थापता लै हुण तूं देख गो केवल उहनूं नहीं अगों तारण योग बण। सालसराय गौरी नूं निरी उहदी अख नहीं खोली नाल मंजी दे दित्ती आ इन्ने साल तेरी उमर ही तेरे बादों तेरा नौकर बैठेगा अधरका। ओह फिर इस सारे इलाके नूं निरंकार दे घर चों दातां लै के गज के आखो सतनाम। ਮਾਣ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ।

कोई चंगा कर्म करके मैं बख्शा लो, जे पापा दी एक परी होवे एक पंड होवे ता कोई चंगा कम करके मैं बख्शा लवा। हे वाहेगुरु, एथे ता पापा दा कोई अंत ही नहीं, कितने कु हन जिस तरह समुंदर दियां लहरां दा कोई अंत नहीं, मेरे पापा दा भी कोई अंत नहीं। उचारण करो श्री जेता समुंदर सागर नीर भरिया, नीर तो भाव लहरां, कितना कु सागर है, पहला तो सागर दा ही अंत नहीं, फिर उदियां लहरां दा भाई कौन अंत पाएगा। आप निरंकार होंदे होए, आप समर्थ पुरख होंदे होए, अनेक कला दे मालिक धन गुरु नानक पातशाह सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हन। भाई मनुष्य ने सेवा सिमरन पर उपकार करदिया होया भी गुरु अगे अकाल पुरख अगे ए अरदास करनी है, मते किसे चंगे कर्म दा तेरे मन विच हंकार आ जावे, ते ऐसा ना होवे के तू चंगे कर्म करके अहंकार करे, ते फिर ओ गल बन जावे मत थोड़ी शेव गवाईए, कीती हुई सेवा भी तेरी व्यर्थ चली जावे जे अहंकार करे। नहीं भाई, सब कुछ करदिया होया भी तू अकाल पुरख अगे ए अरदास करनी है, जो धन गुरु नानक पातशाह सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हन। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, हे वाहेगुरु पर तू बख्शेंद भी ओडा ही वड्डा है, जितने वड्डे असी पापी हां तू तो कई गुणा वध बख्शेंद है। जे समुंदर दे

मैं आया था सा संसार में सेवा सिमरन परपकार करन ली, पर मैं ता कोई भला कर्म ना कर सकिया। मैं बना के रखनी सी नाम जपन वालियां दे नाल, मैं बना के रखनी सी तेरे नाल हे वाहिगुरु। मैं ता किसी नाल भी ना बना के रखी, मैं ता पदार्था नाल ही बना के रखी। इस लई राख लियो हुण मैं तेरी शरणा, मंदे चंगे जेहो जे हां वाहिगुरु तू सानू अपने चरणा विच रख लै बख्श लै।

आशा रूपी श्वान बैठे जिदे नाल तृष्णा ते आशा दिया दो कुतियां भी नाल हन, क्योंकि मनुख सवेर तो शाम तक अपने दंदियां विच ज्यों ज्यों पौकण लगदा है सारा दिन बीत जांदा है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ये सवेर तो शुरू होंदा है अपने कार विहारा विच खचत ते रात तक इस नूं तेरे नाम जपन दा कोई पता नहीं होंदा। इसलिए धन गुरु नानक पातशाह कहंदे ने एक सुवान दोए सुवानी नाल पलके पौकें सदा बया। आशा ते मनसा दियां कुतियां इसते अंदर हन जो इस नूं तेरा नाम भुला देंदियां हन। कदी ओ कम है कदी उधर तोर देंदियां हन कदी उधर तोर देंदियां हन। ये साडी बिरती है उचारण करो श्री वाहेगुरु। कूड़ शुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की पंद ना करनी की कार हो बिकड़े रूप रहा बिकराल। हे वाहेगुरु साडा ए हाल है पर हुण किवें साडा पार उतारा होवे। तेरा एक नाम तारे संसार एक नाम ही तेरा तार सकदा है। ते ओ अरदास कीतिया भाई प्राप्त होंदा है जेता समुद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार जैसा चल जाए एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समय तो बंदा काम का लैन देन करता रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहू नाल पा

तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता, जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है, और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच, और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हाथ जुड़ जाने का मतलब है साहेब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हों हाथों ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हों हाथों तो होना कुछ नहीं, यह हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हों हाथों च ताकत नहीं कुछ कर सकन, आप करता पुरख हो, इन्हों हाथों तो कुछ नहीं होना, यह हाथ बज गए, यह हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हों तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवे हाथ बन के सत्कार हुंदा ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हाथ बनने, लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हों हाथों तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ, मत्था टेकने पातशाह इन्हों हाथों तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो, मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा, प्रभु दा होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरू दा कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा, ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा, पसीने पूंजदा, सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी, कार्ज आया रासे नानक कहो गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे, जदों सतगुरु कार्ज करना आ जावे उसले कार्जां च शोभा हुंदी, ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा, ये गल वखरी है कि अरदास करने वाला बंदा कार्य की संपूर्णता तो बाद यह नहीं कहता मैं काम नबेड़ दिया, बल्कि वह तो यह कहता है।

तीन चीजा का जिक्र होगा, चार लैणा होणगियां, चार स्टेप दे विच तीन चीजा, बारह का समेल करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह तिना विच मिक्स कर देणगे।

0: मेरा है, but how do I know he's made an all?
1: बेटा, वाहिगुरु नू अपनी जिंदगी विच वसाउणा पैंदा है। You have to make वाहिगुरु a big part of your life.
0: But how, Nanaji?
1: You have to develop a greater awareness of Vaheguru in your life. Develop a greater awareness of His constant presence. Ustut man mein kar nirankar. In your heart, your feelings, in your love for everything and everyone, always feel Vaheguru's presence. Aap de charan us de marg te rakho. अपने मन विच उसनु वसाओ, अपने दिल विच उसनु वसाओ, अपने कन्ना नाल उसनु सुनो, अपनी जीव नाल उसदा नाम लवो, अपनी अखां नाल उसनु हर एक विच देखो। यू हैव टू ट्रेन ऑल योर सेंसेस इन बिकमिंग अवेयर ऑफ वाहेगुरु। इन दिस नेक्स्ट शब्द फॉर एग्जाम्पल इट सेज वॉक ऑन वाहेगुरुज पाथ, फील वाहेगुरु, develop love for Vaheguru, hear Vaheguru, taste Vaheguru, say Vaheguru, touch Vaheguru, see Vaheguru in His creation all around you, including in yourself and in everyone around you.